0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रुदि खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
3: कल्चर ऑफ पंजाब

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: कई बार ढेर सारी बातें दबी रहती हैं जहन में कई सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास हैं उस खास इंसान के पास पर होता यूं है कि कई बार हालात कई बार जज्बात बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम पर ये दोनों चीजें कहने नहीं देती कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें मगर इस जुबान ने कहने ना दिया कभी वक्त की खामोशी में खामोश रहे हम तो कभी उनकी खामोशी ने कहने ना दिया

न हौसला न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं फिर भी चल रहे हैं लोग, न वफा न किरदार न उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। वाकई में इन चंद लाइंस में सच्चाई है। द हार्श रियलिटी ऑफ टुडे सिनेरियो इज हिडन। अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता, क्योंकि मुखौटे जो लगा कर घूमते हैं हम लोग। चले बातें तो बहुत सी होती रहेंगी, एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक पहले।

एक मिली मैनू अप्सरा कन्ना दे विच वालियां जुल्फा कालियां कालियां गोरा गोरा चामी जिवें ठंड च रामी।

थोड़ा मी पिया ओनु छूनु जी पिया मेरे कोलो लंगा फकीर एक कहना छड़ इश्क विच की पिया मैं ओदी नी मन्नी गल वई मैं क्या अगे नू चल वई फुलां दा लगी राज महल ओ तुरदा फिरदा ताज महल ते ताज महल नू कोई नी छड़दा ते ताज महल नू कोई नी छड़दा जे मिलदा होवे मंगे तो जे कपड़े दी कोई कीमत पुछे पुछे फिर किसे नंगे तो सुन के ओदी आवाज सुता रब उठ गया मंजे तो ते फिर मेरी की औकात है मेरी की औकात है उत्तों काली रात है ओनू मैं भी चंगा लग्या क्या बात है क्या बात है फिर दोवां ने अपनिया अपनिया धड़कना वधालिया एक मिली मैनू अफसरा कन्ना दे विच वालियां जुल्फा कालियां कालियां अखां नीलियां नीलियां पता नहीं किधरों पहाड़ियां गोरा गोरा

जिंदगी को सही तरीके से जीना है, जो सलीका है सबका इंडिविजुअल होता है, पर मैं ये मानती हूँ कि कभी गुजरे हुए वक्त को उलट कर देखो, आगे बढ़ना है तो पीछे पलट कर ना देखो। खूबसूरत सी नजर आती है ये दुनिया यूं तो, देखना है तो जरा नकाब उलट कर देखो। एंड फाइनली अपने वादों के अल्फाजों को ना भूलो कभी, और कहीं भूल जाने का अगर खौफ है तो उन्हें रट कर देखो।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अपने आप को जब तलाशना शुरू करते हैं तो खुद को ढूंढते ढूंढते कई बार हम पहुंच जाते हैं आईने के पास। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। अब तो ले देकर वही शख्स बचा है मुझको मुझसे जुदा करके जो छिपा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि कौन हूँ मैं, पर इस बात पे खामोश है कि क्या खास है मुझ में।

0: पंजाबे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

जिंदगी थमने का नहीं, लड़ने का बढ़ने का नाम है, और किसी के आने या जाने से ये कभी रुकती नहीं। जिंदगी ने कहा मुस्कुराते हुए, मिल तो जाओ कभी आते जाते हुए, वो भी शायद पशेमा था मेरी तरह, मुड़ के देखा तो था शायद उसने जाते हुए। आदमी की बहुत सी है मजबूरियां, ये कहा था उसने जाते हुए। अपने वादे पे जिनको बहुत नाज था, उनको देखा है हमने बहाने बनाते हुए। हम रुके थोड़ा, हम भी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए।

इससे पहले कि कुछ समझ आए वक्त गुजर जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है और हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि पता ही नहीं चला। जीवन एक धारा सा कब बह निकला पता ही नहीं चला। क्या लिखूं मैं इन पन्नों पर जिन पर स्याही नहीं टिकती। मेरे कलम ने कब छोड़ा लिखना। दिन गुजरे रातें ढलती रही। मेरी सुबहों ने मेरी शामों से कब नाता तोड़ा पता ही नहीं चला। निराश नहीं जिंदगी से मैं भी, हाँ हैरान जरूर हूँ। कौन था मेरे साथ, किसने था मुझको मोड़ा पता ही नहीं चला।